जिनकी कुल मूढ़न की महा, जिना दे कुल खानदान अनपढ़ सन मूढ़ सन, उन्हां नूं पढ़ा के गुरुदेव ने निर्मले संत बना दिता। जिनकी कुल मूढ़न की महा, अखर भेव न जाने कहां, से पंडित तब पढ़ पढ़ बने, निज समता किसको ने गने, इम गादर ते शेर बनाए, बायस हंस चाल सिकराए। जिदड़ा तू शेर ते कावां तू हंस बना दिता,

हो बुल बलहारी गुर अपने जिन विछड़िया मेलिया मेरा सृजनहारा मेरे राम हम पापी शरण परे हर द्वार मत निर्गुण हम मेले कबहू अपनी कृपा दा हमरे अवगुण बहुत बहुत है बह बार बार हर गणत न आवे तू गुणवंता हर हर दयाल हर आपे बख्श ले हर भावे हम अपराधी राखे गुरु संगति उप

सटा तेरा ए नहीं। प्यारे गुरुदेव सतगुरु सच्चे पातशाह जी, साडे जीवन दे विच जो सोची विचार और मत अज्ञानता के कारण दुनियावी मोह ममता के कारण अत्यंत तृष्णावां के कारण जो असल सोची होनी चाहिए है इंसान में वो नहीं है। ते गुरु बाबा जी अपने शब्दों के राही अपने इन्हां पवित्र वचना के राही सानू ओ मत बख्शते हैं जिस मत नू गुरु मत आख्या जाता है, गुरु की मत जो कि जीव के जीवन च आए तो बिना इतनी देर तक जीव के जीवन के जिंदगी दे विच गुरु की मत ना आ जाए उतनी देर तक वह अंधेरे दे विच ही रहिंदा है, अंधकार दे विच ही रहिंदा है। कल दे कीर्तन दे विच असीं यही विचारिया सी, मत जो साधारण तौर पर सानू मिली है उस मत दे विच अजिही शिक्षा शामिल नहीं जो कि साडे जीवन नू सफल कर सके, साडे जीवन नू इसकी मंजिल तक पहुंचा सके अते मनुखा जन्म असी सफला कर सके। गुरु बाबा जी की बाणी असी सारे पढ़ते हैं अते गुरु बाबा जी की बाणी दे विच एक गल बिल्कुल स्पष्ट है कि साडे इस ह्यूमन फॉर्म दे विच आण दा कोई बहुत ही खास पर्पस है, एवें नहीं असी आए। ह्यूमन फॉर्म दे विच आण दा बहुत वड्डा रीजन है, एक खास मकसद है जिसनू असी पूरा करना है। ये शिक्षा, ये तालीम असी बड़े कैजुअल माइंड के नाल सुनते हाँ पर इसनू असी बहुता ज्यादा सीरियस नहीं लेंगे। पर महाराज जी की बाणी इसनू बहुत सीरियसली लेंगे। महाराज जी की बाणी आखदी है तुसी सिर्फ एक ही काम करन दे वास्ते आए हो, तुहाडा इस ह्यूमन फॉर्म दे विच आण दा बहुत एक भारी मकसद है। वो की है? गुरु बाबा जी आखदे हन अपनी पवित्र बाणी दे विच

गुरु महाराज जी दसते हैं कि इंसान सानू समझांदे हैं, मत दिंदे हैं, इस शब्द दे राही साडे जो जीवन रुक गए हैं, असी राह च ही किते डेरा लगा लिया है, मंजिल तक अपड़े ही नहीं, मंजिल दा ख्याल ही नहीं, मंजिल दा चेता ही नहीं, अते रस्ते दे विच ही किते डेरा बना लिया है। गुरु बाबा जी ने आख्या मंजिल ते पहुंचन तो पहला डेरा नहीं बनाई, मंजिल ते पहुंचन तो पहला रुक नहीं जाएगा, तेरी मंजिल किते होर है लेकिन तू डेरा किते होर बना के बह गया है, रस्ते च ही रुक गया। असी इन्हां कीर्तनां नूं जे ते इस तरह सुनांगे कि असी अपने जीवनां नूं कोई इंस्पीरेशन दे के अगां तोरना है, तो जो साडा फर्ज बनता है वह असी करना है, फिर ते कीर्तन कीते और सुने बहुत ही भागां दी गल है। नहीं ते साडी आदत नूं महाराज जी जानते हैं, वह भी मैं आप जी नूं सुनानी चाहना थोड़ी जी। साडी जो आदत है, जिस तरह मैं कल भी कीर्तन च अर्ज कीती सी कि मैं एक लफज भी अपने पासों नहीं कहना, तो जे कोई गल चुभमी भी लगे तो वह गुरु महाराज जी की है, उन्होंने हक है सानू समझाण दा, कई तरह कहण दा। गुरु महाराज मनुख दे जीवन नू जानदे हन, ये सुन सुना लैंदा है, पर उसे तरह दा ही बनिया रहिंदा है, बदलदा नहीं। सबे गल्लां जातियां सारियां गल्लां जान लईयां, सुन लईयां, पढ़ भी लईयां, सुन के चुप किया, पर फिर भी कहिंदे सुन के यह चुप कीता रहिंदा। सबे गल्लां जातियां सुन के चुप किया फिर चुप कीता रहिंदा है, जीवन दे विच इह एक्शन नहीं लेंदा। सब तो पहला तो इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए है, इन्फॉर्मेशन मिलने तो बाद इंसान का फर्ज है कि उस उत्ते एक्शन लवे। गुरु महाराज आओ अज के कीर्तन दे विच जो सानू समझा रहे हैं वो ही कहते हैं कि जिथे तुसी रुक गए हो, जिथे तुसी अपना डेरा बना लिया है, जिसनूं तुसीं अपनी दुनिया बना लिया है, कहिंदे ओह तुहाडी दुनिया नहीं है, इत्थे तुहाडा डेरा नहीं है, इत्थे तुहाडा घर नहीं है, इत्थे तुहाडी मंजिल नहीं है। बच्चे नूं प्यार नाल पिछे लै जाओ, इस तरह कीर्तन च डिस्ट्रैक्शन हुंदी है और उस ख्याल दी लड़ी दे विच विघन पैंदा है।

गुफा पुराने लोग ऋषि मुनि गुफा में बना के रिहा करते सन। गुरु महाराज जी आखद साडी भी एक गुफा है, असि एक गुफा दे विच रहने हैं, पर वो केड़ी गुफा है? कहिंदे सहज अवस्था। हुण सहज की चीज है? आत्मा ही सहज है। अकाल पुरख वाहिगुरु सहज है। सहज का मतलब जो कदे भी ना बदलता होवे उसनु सहज आखते हैं। शरीर सहज दे विच कमजोर हुंदा है, कदे ताकतवर हुंदा है। शरीर दे विच अनेकां चेंजेस आंदियां हन, कदे बचपन है, कदे जवानी है, कदे बुढ़ेपा है। शरीर दे विच हर वक्त चेंज आंदी है। शरीर दे अंदर एक होर वस्तु है, वह है मन। वो भी सहज दे विच नहीं है। ना शरीर सहज है, ना मन सहज दे विच है। ते सहज दे विच केड़ी वस्तु है? केड़ी वस्तु है? आत्मा। आत्मा जो वस्तु है वह सहज दे विच है। गुरु महाराज जी कहंदे ओ सहज जो है, आत्मा जो है, उस दे विच असीं अपनी गुफा बना के उत्ते रहने हां। वह साडा घर है।

अर्थ अनंत, अनंत का मतलब लिमिटलेस, कहते बेअंत इसका कोई हिसाब ही नहीं है, इतनी खुशी है उत्थे अर्थ अनंत। सोग नहीं बिया, सोग का नामो निशान नहीं है, कहते हैं सोग घर गुरु नानक को दिया। परमेश्वर ने अकाल पुरख ने गुरु नानक नो कर दिता है, वह है निज घर। कितने महाराज उस सहज गुफा आखते हैं कि सहज गुफा घर आसन बांधिया, कितने आखते हैं हरख अनंत सोग नहीं बीया सो घर गुरु नानक को दिया। तो एक पंक्ति होर सुनाना, कहते हैं नानक बद्दा करता हां। असी भी जदों एक ते हुंदा ना भी बनया बनाया कर ले लेना, एक हुंदा है कस्टम मेड हाउस बनवाना, के प्रॉपर कोई आप सिलेक्ट करके लॉट लैके कोई लोकेशन देख के कोई जगह लैके फिर आप उत्ते अपनी डिजाइन दा अपने मतलब दा घर बनवाना, घर बनना। गुरु महाराज जी आखदे हन के मैं अपना घर उत्थे बनाया है, नानक बद्दा करता हां, कि मैं अपना घर तहां यानी उत्थे बनाया है, किथे जिथे मृत ना जन्म जरा, ना उत्थे मृत्यु आंदी है, ना उत्थे जन्म है, ना मरण है, ना बुढ़ेपा है। भाव उत्थे निज घर महल पावो सुख सहजे बहोर ना होए गो फेरा, उत्थों फिर वापस फेरा नहीं होएगा। उस घर च पहुंच के ही तुसी अपनी मंजिल च पहुंचते हो, उस तो उरे उरे जितने भी घर हैं गुरु बाबा जी आखते हैं ये तुहाडा डेरा नहीं है, ये रस्ता ही है। मनुखा जन्म जो है वो राह दे विच ही तुसी हो, ये पेंडा ही है, इसनू मंजिल ना समझ लो। ते इथे घर बना के बैठ गए ते उथे रुक गए ते फिर तुसी मंजिल ते ना पहुंचे, रस्ते दे विच ही रुक गए। यह है गुरमत की तालीम। प्यार नाल इस पंक्ति नू गाओ।

जो है वो वेस्ट करो, अपना टाइम ना जाया करो, अपने असल घर नु लभण की कोशिश करो। जहां डेरा तह जान, फिर कहते हैं कि उस डेरे का उस घर का पता किवें चले, कहते ने वह डेरा का संजमो, उस डेरे तक पहुंचने का जरा संजम का भाव विधि है गुर के शब्द पछाण, गुरु के शब्द के राही उसकी पछाण आनी है जो शब्दों की असी विचार करांगे। फिर कहते हैं आ डेरा को श्रम कर काले, आ जेडे इथे दे डेरे हन साडे जो घर हन इन्हां दे वास्ते असी इतनी मेहनत करते हां, इतनी श्रम दा भाव हुंदा है मेहनत, इतनी मेहनत मुशक्कत करते हां जांका तसू नहीं संग चाले, जिसका एक कख भी नाल नहीं जाना। या डेरा को श्रम कर काले जांका तसू नहीं संग चाले, कहिंदे उआ डेरा की सो मित जाने, उस असल परमानेंट डेरे दी जो मिति भाव, उस दी जो इन्फॉर्मेशन है, उस दा ज्ञान जो है, उसकी प्राप्ति है, वो उसनु हुंदी है जांको दृष्ट पूर्ण भगवान ने, जिस उत्ते भगवान दी अकाल पुरख वाहिगुरु दी पूर्ण दृष्टि होवे, ओ भागां वाला हुंदा है, उस डेरे नु लभदा है, बाकी इन्हां ही डेरियां दे विच खचत होके रह जांदे हन, सोचते ही नहीं हन। अखीर चाक दिन डेरा निश्चल साध संग पाया, साधुआं दी संगत दे विच कहिंदे ओ जिहड़ा निश्चल डेरा है ओ पाया जांदा है। एक दफा उस डेरे नू उस निज घर नू इंसान प्राप्त कर ले, नानक ते जन नैन डो लाया, ओ जन ओ इंसान कदे भी फिर मुड़ के डोलदा नहीं है, क्योंकि जिसनू अपना घर प्राप्त हो गया उसने फिर की डोलना होया। तो अज दे कीर्तन दे विचों जो शिक्षा जो गुरमत सानू प्राप्त हो रही है ओ सानू ए अवेकनिंग दे रही है, ए जाग लिया रही है, साडे अंदर सानू जगा रही है कि अगर एना ही घरां नू अपना घर बना के बैठे हो ते ए ते राह दे विच ही जिस तरह कोई रुक गया होवे ओ हाल है, ए मंजिल नहीं है, ए ते रस्ते दे विच ही एक छोटा जिहा पड़ाव है चंद एक दिनां दा, नानक दुनिया चार दिहाड़े, बस इतना की है इसका स्थान, नानक दुनिया चार दिहाड़े सुख कीते दुख होई, एना चार दिनां दे वास्ते जितने ज्यादा सुख ढूंढोंगे उतने ज्यादा दुखी होवोंगे, उतने ज्यादा परेशान होवोंगे। तो एक दफा आओ इस विचार नू अपने अंदर लैके जाना है नाल कि असा कोई अपना निज घर हाले होर है जो लभना है, जिथे जाके ए साडी रूह ने निवास करना है, इस विचार नू नाल लेके जाना। प्रेम नाल एक दफा इस पंक्ति नू गौर फिर अगे चल रहे।

वो बिल्कुल भुल गया है, वो बिल्कुल मरना भुल गया है, इस करके असि इत्थे अपना डेरा बना रहे हैं। कहिंदे हन ये डेरा नहीं है, इत्थों अगां ट्राई टू मूव फर्दर। गुरबाणी दे विचों अपनी मंजिल समझो, निज घर नूं प्राप्त करना है जो कि तुहाडा असल डेरा है। कहिंदे हन मत्ती मरण विसारिया, इस मत्ती हुई मस्त मत ने जो कि दुनियावी रंग च मस्त है मरना विसार दिता है,

साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सचे पातशाह जी की शरण के अंदर रह रहे बड़े पतवंते कवि जिन्होंने साहब गरीब नवाज गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की पावन चरणा अंदर बिने की सतगुरु जिन्या गल्लां आप जी ने कहे हैं जितने वचन महाराज जी वो सब सच हुए ने पर गरीब नवाज सचे पातशाह आप समय नूं जानन हार हो समय दी ठीक समय अनुसार पहचान करन वाले सतगुरु जी आप जी ने कई दफा किया भाई पंथ ते बड़ा बिखड़ा समा आउना है पंथ ते बड़ा बिखड़ा समा आउना है पर पंथ दी अगवाई करन वाला साहिब गरीब नवाज गुरु गोबिंद सिंह महाराज आप तो बगैर कौन है। तो गरीब नवाज साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सचे पातशाह नूं कवि ने हाथ जोड़ जोड़ के बेनती की थी, साहिब सचे पातशाह महाराज पंथ की राखो ताकि ग्रंथ की मानता रह जाए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिन्हू अजे गुरता गद्दी नहीं सी बख्शी गरीब नवाज सचे पातशाह जी चरणा च जदों सिखां ने बेनती की महाराज पंथ की इज्जत पत आबरू आप जी ने बचाई है ते पंथ नूं कुछ ऐसे नियम दिओ जिस दे नाल इन्हां दी सारी रहिंदी दुनिया तक इन्हां दी रही जावे। ते साहिब गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज ने सिखां नूं एक वचन कहा सी श्री आनंदपुर साहिब दी धरती दे उपर बैठे आ कि पंथ जिन्ना चिर शब्द ते लड़ लगा रहेगा अकाल पुरख दी पूजा विच लगा रहेगा उन्हां चिर एक कुराहे नहीं पै सकदा जिन्हें अकाल पुरख की जदों इसने पूजा छड़ दित्ती ना यह भटक जाएगा कुराहे पै जाएगा। ते गरीब नवाज सचे पातशाह जी दियां ओ गल्लां अते बचन जिहड़े हन श्री अबचल नगर हजूर साहब विखे गरीब नवाज सचे पातशाह ने भाई प्रहलाद ते भाई नंद लाल जी की समस्त पेश कीते गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज उस समय का वातावरण जो रहतनामे अंदर लिखिया है गरीब नवाज वर्णन करते हैं।

महाराज कलगीधर पिता ने भाई नंद लाल नूं कहा भाई आ तैनू दसीए भी साडे रूप केड़े केड़े ने केड़े रूप दे तुसी अज तक दर्शन कीते ने ते केड़े दे दर्शन नहीं कीते ते केड़े दे आद जगाद तुसी दर्शन करने ने।

पहला रूप साडा ए है जिहड़ा तिना गुणा तो परे है, रजो तमो सतो इन्हां तिना गुणों तो परे है। ये जिवें सारी बनस्पति दे अंदर अग है ना, किसे भी दरख्त नूं छांग के वेख लो, भावें ओ अंब दा होवे भावें पिकर दा होवे, भावें दरख्त निम दा है भावें टाली दा है, अग सारिआं दे अंदर है, झट ही सारिआं नूं अग फड़ लैगी, क्योंकि बनस्पति दे अंदर अग है। ते सारे दुद्धां नूं इकट्ठियां कर लो, भावें ओ घा दा दुद्ध होवे ते भावें मझ दा होवे, गां दा होवे, बकरी दा होवे, किसे दा भी दुद्ध होवे, उस दे अंदर घिओ है। जिवें दुद्ध अंदर घिओ ते बनस्पति दे अंदर अग है। घट घट व्यापरिया परमात्मा वाहिगुरु सचे पातशाह जर्रे जर्रे अंदर जिहड़ा वसदा पिया, एक रूप साडा ओ है जिवें जल किसे घड़े दे अंदर पाया होवे। ते जल जल दा रूप है, जल दे अंदर भी परमात्मा वस रिहा है। पहला रूप साडा तिना गुणा तो परे है, कोई उस गुण नूं जान नहीं सकदा, कोई उस नूं वेख नहीं सकदा। वेखन अंदर ते बड़ा कुछ नजर आ रहा है, पर अनुभव दी अख नाल कोई नहीं वेख सकदा। इस करके इस गुण दी पहचान होनी मुश्किल है, क्योंकि इस दे विच कोई रूप नहीं। ए चक्कर चिन्ह अर बरण जात अर पात नहन, जे रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत के। ए लंबा चल, इस रूप नूं अखां नाल वेख सकदे हो, अनुभव नहीं कर सकदे।

एक होर बात कहना, जिन्ने अखर ने ए मेरे रोम हन, शरीर दे जितने रोम ने ना, साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज सचे पातशाह ने किया, गुरु ग्रंथ साहिब विच आए हुए अखर ए मेरे रोम ने, ते जे एक भी अखर उरा परा हो जाए समझो मेरा रोम टूट जाएगा, समझो रोमा दी बिरद भी हो जाएगी। ते गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी बाणी पढ़न लगे, असी विचार नहीं करदे कितनियां लगा मात्रा अगे पिछे हो जांदियां ने, किन्नी नरादरी हुंदी, कोई पवित्रता नहीं। मैले हथ जड़े हन गुरु ग्रंथ साहिब दे अंगां नूं ला दिंदे आ, समझो गुरु गोबिंद सिंह महाराज सचे पातशाह जी दे पवित्र चेहरे नूं साडा मैला हथ लग गया। इस करके बड़ी पवित्रता दे नाल गुरु के सिखो, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज नूं गुरु मानो। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज नूं हाजिर गुरु मनोगे ते साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे दर्शन इसे विचों होणगे, दस पातशाहियां दे दर्शन होणगे। भाई नंद लाल जिन्या लगा मात्रा ते अखर ने ए मेरे रोम ने, बड़े पवित्र हिरदे नाल पढ़ने, बड़ी सोच विचार करके पढ़ने, किते अंगां दी बेअदबी ना हो जाए, किते रोम जड़े हन टुट ना जान साहिब सचे पातशाह महाराज दे। इस करके बड़े अदब नाल गुरु का सिख गुरु की बाणी पढ़े, गुरु ग्रंथ साहिब नूं मत्था टेके हाजरा गुरु मन्ने। अगले वचन साहिब सचे पातशाह जी ने कहे।

उनका वचन बसे जी ना ले, जल नहीं डूबे तस्कर नहीं देवे, भाई नशा के जाले खमाल अंगी के तनासरी शब्द श्रवण करो तिंताल देवी।

अलग अलग हन पर जोत ओहा जुगत साई सह पाया फेर पलती। पर एक गल किसे किसे ने समझी, किसे ने आख्या ए गुरु होर ओ गुरु होर, इस दी मर्यादा कुछ होर, उस गुरु दी मर्यादा कुछ होर। भाई गुरदास साहब जी कहना कहते ने इस भुलेखे विच ना रहियो, जे इस गलत फहमी विच रहा कि जो घर विच सुख साधन होण वो भी मुक जाणगे। गुरु कलगीधर पातशाह कहते ने जिन जाना तिन ही सिद्ध पाई, बिन समझे सिद्ध हाथ न आए। रिधियां सिद्धियां उन्हां दे घरां विचों जांदियां रहियां जिन्हां ने आख्या ए गुरु कुछ होर ओ गुरु कोई होर।

जित नाम साचा सुख होवे दिन राती हर हर नाम जपो मन मेरे किस मृत सब किल बिक पाप।

हर हर नाम गोविंद, जप मन हर हर नाम गोविंद, बड़ पागी गुर सतगुरु पाया गुण गावत परमानल, जप मन सतनाम सत सतनाम।

जप मन सतनाम सदा सतनाम, हलत पलत मुख उज्जल हुए, जय त्याय हर पुरख निरंजना, जय हर सिमरन भया, तै अपार जगत कीनी, बड पागी हर जपना, बड पागी हर जपना। आखिरी पंक्ति है,

yaşadığı belki hissedilir. Guru Maharaj'ı longing present karte hain, longing pesh karte hain, ek pyaas zarurat ek tadap da zikr karte hain. Rakhte han man loche har milan ko, mera man परमात्मा नु मिलना लोचदा है, इसके अंदर बड़ी भारी लोचा है। जदों परमात्मा नु मिलन दी जीव के अंदर भुख लोच प्यास पैदा हो जाए, समझो उसके अंदर बाकी तमाम चीजा ले वैराग हो गया। वैराग का अर्थ के बाकी तमाम चीजों के विचों वो डिसइंटरेस्टेड हो गए, ही हैज नो मोर इंटरेस्ट इन वर्ल्डली थिंग्स। उसके अंदर एक ही प्यास है कि वो उसने जो बनाने वाला है, सारी सृष्टि को साजन वाला है, जो उसमें पानी दिंदा है, ऑक्सीजन दिंदा है, धरती दिंदा है, अनाज दिंदा है, वो कौन है? जिसने इसमें बनाया है वो कौन है? वो अपने असल हर जी माता हर जी पिता जो सपना का पिता माता है उसको मिलना चाहता है, और उस अवस्था के मन दुनिया वालों वैरागवान हो जाता है। दुनिया वालों मन जो है वो उदास हो जाता है, भाव उसमें कोई और किसी चीज की रुचि नहीं रह जाती, उसकी रुचि बदल जाती। बाबा जी आखते हैं इस अवस्था से जाके जो जिज्ञासु है उसकी रुचि बदल गई है, उस मन की अवस्था यह है कि मेरा मन एक ही प्रिया मांगे। मेरा मन जो है वो एक उस प्रिया नू अपने प्यारे नू ही मंगता है, होर किसी चीज के नाल वो सैटल नहीं हुंदा, तृप्त नहीं हुंदा। मेरा मन एक ही प्रिया मांगे, मन लोचे हर मिलन। मन जो है वो दिन रात उस अकाल प्रभु दे दीदारां लई उस दे मिलन दे लई बेचैन रहिंदा है, अते अंदर एक सवाल पैदा रहिंदा है, क्यों दर्शन पाईया, किवें उसका मैं दर्शन करां, किवें मैं उसनू मिलां। प्यास इतनी गहरी होंदी है, मैं लख विड़ते साहिबा जे बिंद बोलाई है। इसके विच ये आख्या है कि ऐ मेरे साहिब, जे मैनू एक बिंद एक पल एक छिंदे वास्ते भी तू बुला लवे, मैनू मिल पवे, मैनू मौका दे देवे, तो मैं समझांगा मैं लखां पा लें, मैं लख विड़पते साहिबा, मैं सब कुछ पा लिया, मैं लखां करोड़ां हासिल कर लिया, जे मैनू एक मोमेंट दे वास्ते भी अपना मिलन दे दवें, अपने दीदार दे दवें, अपने आप नू मिला लूं, क्योंकि मैं सब कुछ करके देख लिया है,
किसी भी चीज तृप्ति नहीं है, फुलफिलमेंट नहीं है, जॉय नहीं है, सब कुछ आर्टिफिशियल है, फेक है, मोमेंटरली है, अते दुख का कारण है। दुनिया का हर सुख जो है वो नाल ही नाल दुख भी दिंदा है। इस करके कहते हैं मैं चारे कुंडा पालिया, मैं हर थां ते भाव, मैं सब कुछ देख लिया है, तुद जेवड़ ना साइया, ऐसाई तेरे वर्गा कोई नहीं है। मेरे अंदर एक ख्वाहिश है, एक प्यास है, एक उमंग है, एक तमन्ना है, एक जाचना है, एक लॉन्गिंग है कि तेरे दर्शन मैनू किवें हो। शब्द का पहला हिस्सा जो है उस दे विच महाराज जी एक जिज्ञासा पेश करते हैं, अते ऐसा जिज्ञासु महापुरखां दे संतां दे पास आके बेनती करता है। उस बेनती नू आओ गाइए, दिलों गाइए।

परमात्मा खूबसूरत जवाब देता है, कहते मन अर्पयो। सुखमनी साहब जी महाराज ने आख्या है ना, कहते हैं

गुरु की संगत अज दा शुभ दिन कॉन्फ्रेंस दे पहले दिन दी अरमता और बख्शिश सतगुरु जी दी। इस वक्त समा जरा अमृत वेले तो लह के आप जी नूं जरा थोड़ी जी गर्मी महसूस हो रही होवेगी। जिथे आप जी ने सतगुरु जी दे कई चमत्कार देखे हैं उथे सब तो वड्डा चमत्कार शब्द है, एदी विच कला है। वाजे पंज शब्द घर सवागे, घर सवागे शब्द वाजे कला जद गिरधारिया। उस कला नूं होर प्रगट करन वास्ते सतगुरु जी ने शब्द नूं रागां विच उचारण कीता है। मेरा दिल करदा है इस वक्त सारे दुनिया दे

0: महापापते देव सबे मुल इंद्र महाशिव जो करी केड़ा अंत न पार वारिया
1: अंत न पावत देव सबे
0: अंत न पावत देव सबे मुल इंद्र महाशिव जो करी फुन वेद बरंच विचार रघो हर जपन छाटू एक गरी पथरा जन को प्रभु तीन दयाल सब